ब्रह्मा मुरारी स्तिपरंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्त गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु।

0: नया नेपालको नया रेडियो
1: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज।
2: अब रंग फेसु मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माइ फिट नला विश्वासी समक बसुगो धैर्यसे ब्रणबला लंगाई जयमसी तथा नमस्कार स्पार्क माइ फेथ ल अंक 9 तथा नला विश्वासी समक बसुगो न वियोग तामाङ तिनीङ रंग दिदेन पुरानो नियम ज्ञान हन्नाला बार रित्तिगरी जुबारी सिमुला एलकनाला गई खुइका दे मुबा पिन्हा देन हन्ना पिन्हा कोला जामे मुबा तासै हन्ना बाजी मुबा पिन्हा से लानन रंगबा बिबारी जत्तुगो ताबरी घमन्द थन्जी जोसे लामा हन्ना लानन न्वेजी पिन्हा जे हन्ना दा चुताम बारम्बार दन्जीब मुबा जोसे लामा हन्ना गेन पीड़ा तमुबा हन्ना बाजी तबा कारण से लामा लानन शोंदो मिंगदे कदिसे नन थेदा परमेश्वर से श्राप पिन बठार लाबा ताम्री हमला थेम लिंग कदे भेसे बसो गेम हन्ना दा दुखा पिंजी हन्ना तोते लानन दुखी ताजिगी कान खाजी थेनिन जे चाबसे एन खाजी हन्ना से लानन पटक लसुजी की तादोरा एन्ना तिग्द जतुला नवरी हम्बा मुला थेन्डिंग तिग्द आरे रंगसे तिग्द हाई मदावन चन्दोन देन अनुग्रह अंशु मुला तसै गदा तिग्द अनुग्रह अंशु मुला बेसी प्रश्न लजी तिग्द चन्दो गदेसे लानन तरिका से आशिष यङजीव मुला जबकि ग चुरी गला दुखरी नुपरी ठाबा मुला एक समुएल अध्याय 1:10-11 हन्ना से सेमरी गेन थुंगबा छम क्राजी थेन जे परम प्रभु देन प्रार्थना लजी हन्ना से थे ताम बिसी भागल लजी हे सर्वशक्तिमान परम प्रभु यदि रंग से गला दुख गोसियन कृपा दृष्टि लसुजी थेन दे गदा नंसुजी थेन दे यदि रंग से गदा मे बारी हम जी थे यकर्गी जत्तुगु पिंसुजी विषम गा थे जत्तुगुदा थेला लुई पोलुंगी परम प्रभु समर्पण ला थेन दे थेला क्रारी हाइमा छुरा लगब ला अरे हन्ना यांगसेला बारे दी अहम सेला कारण से लामा धुरु धुरु क्राजी थेसे रंगला दुर्दश च्याबरे दिन कदम चालप ला बारी परमेश्वर दा बिन्ती लजी थेला प्रार्थना निष्कपट देन तिंग्याम थोन्जीबा मुबा लिच्छरी हन्ना से परमेश्वर दिन प्रतिज्ञा लजी कि यदि रोसे थेदा जत्तुगु नारी पिंसुजी विषम थेसे थे जत्तुगु परमेश्वर ला सिवक दोबारी समर्पित लमुला कलशित 4:2 एनी गदे सदन परमेश्वर दा धन्यवाद बिन्मान झन्सी प्रार्थना लसिच्यू हन्नसे राङमा अवस्थाला बारेरी प्रार्थना लजिब मुला लालन क्रिस्चियन गदेदा कमजोरी विवाह यदि थेनी गदेला प्रार्थनाला जवाब योनन अशेपनी विषम थेनी गदेसी प्रार्थना लबरी क्लामुला थेलिच्छ थेनी गदेसी प्रार्थना लबरी क्लामुला परमेश्वर से याङला प्रार्थना न्यानबरी दिन जवाब अपिन्बदोदा याङसी विश्वास योग्यतासी प्रार्थना लदोला हन्ना से चुनुन लजी 1 Samuel 1:17 एरी से बीजी शांति देन न्यू थेन दे इज्राएल ला परमेश्वर से ऐसे परमेश्वर देन तो बताम एदा पिंगई हन्ना से जत्तुगु नवा नच्छा लानन दुई ब्रंदोला चु देन लानन दुई प्रार्थना लदुमुला तसै पनिनला जत्तुगु नाबरी योना देन सजिलो ताजी चुग्याम यांगसी तिगा पाठ लोपरी हमला लाना रंगबा लुइरी गेन परीक्षा गदे दिन कष्ट गदे आवश्यक तबा ताम गदे से यांगदा लिछल्ला बिनन भन्दा गेन आशिष गदे क्यार दोल्याप ला मुला हन्नाला कोलाला मिन समुएल मुला थेन दे थे हाजी भाई साधारण जत्तुगो आरे मुगा परमेश्वर से थेदा इज्राइलला लिच्छला नछ्यांग न्यायाधीश देन अगमवक्ता तोबारी छान्छु मला जब रंग रंगला लुइरी घेन परीक्षा वा निराशा घ्याम पीडित मुसुला हन्नसे रंग भन परमेश्वर द प्रार्थनारी रंगला तिङ क्योन्छुगो याद लसुगो लुइला बेनन भन्दा घेन फल कादे लानन रंग भा बेनन भन्दा कठिन यात्रा कदे घ्याम हमुला दीर्तासी लिच्छाला छोन परिणाम कदे पिनला याङ जेखेन धैर्यवान तादोला थेन दे परमेश्वर से जवाफ फिन्सुला बिसी ब्रान्डोला हाइमन एन परमेश्वरी आशा थाकला सुगो वा रंगला स्वर्गीय अबा मुस्युला परमेश्वर से रंगदा नुक्पा प्रेम लसुमला थेन दे परमेश्वर से रंगला प्रार्थना लसुमला आमेन परमेश्वर से रंगिदा लानन आशिष पिनगाई प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन भिक्टर यम लिखित सन्देश याङला भाषारी न्यान्छुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमलाई बारे रङला केही प्रतिक्रिया मुसम 0166194604 रि सम्पर्क लस्युगो हस्त त्यो समय रिङ बिदा दाजी रङनी सम्मदानु जयमसी नमस्कार
3: तपाईँ रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ।